0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Station sponsor. 5,
2: EBI FM 103.1, EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place here in the heart of the city. Time now is 2:30.
3: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio programme, representing our diverse communities at 5 EBI FM every Tuesday from 2:30 to 3 p.m.
4: Jarama Kosadi Toli, Sidik MCCSA.
5: Marhaba, ismi Hana. Apa kabar?
6: Hello, ni Florin Volpe.
7: Ake habari ya subuhi, jina langu ni Judy kutoka MCCSA.
8: Aiboan, mama Shami, MCCSA.
9: Urega, jitago wajiko kuma MCCSA.
10: Hello, magai wa Akash Ali Ahmed, mahao shakaya, at the Multicultural Communities Council of Australia.
11: Hello, Florin Uleta.
12: Como sta fa, je m'appelle Judy.
13: Yasas, abdo MCCSA.
14: Hello, my Abby,
15: oh, hi, MCCSA Gongjong.
16: Hello, ich heiße Hanna.
17: Buongiorno a tutti. Vi auguro una bella giornata. Ciao.
18: Tere, mino nimi on Hanna.
19: Namaste, me Florin bol rahi hu.
20: Jambo, mimi Judy.
21: Zdravo, kako ste? Ja sam Ljub Olimpi.
22: Hari Om. Namaste. Swagat hai 5VVI 103.1 Multicultural Radio Hindu Sangam Channel se. Main hu Dayavati Pandey ke saath aap log sun rahe hain. मैं आभारी हूँ यहाँ नरेश जी का और आदित्य का कि जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. और नरेश जी अच्छा गाना गाते हैं, हमें लगता है कि ये भी अपना बताएंगे, कुछ परिचय देंगे. और आदित्य आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो फिर हम शुरू करते हैं.
23: नमस्कार और हरिओम. मेरा नाम आदित्य रुद्र पांडे है और मैं 19 साल का हूँ. इस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी. और आज मैं अपने दादी के साथ आया हूँ और ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात करूँगा मैं.
22: तो मुझे लगा नरेश जी आप बताइए, अपने परिचय दीजिए. और आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पे अपना अमूल्य समय निकाल कर गए हैं.
24: बहुत शुक्रिया. मेरा नाम नरेश पंजवानी है. मैं यहाँ पे एडलेड में काफ़ी महीनों से आया हूँ. उससे कम से कम 5 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए. और यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ मुझे पंड्या जी से. मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक मौका दिया गया है वापस दोबारा इधर आने का और यहाँ गाना गाने का.
22: बहुत मुझे पता चला था कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हम कहीं एक बार आपका हो जाएगा. और आदित्य जो है ऑर्गेनिक फूड के बारे में बताना चाहते हैं कि इससे क्या ऑर्गेनिक फूड क्या है, किसे कहते हैं ऑर्गेनिक और किसे कहते हैं और तरह का फूड.
24: हाँ जी,
22: तो आप हमें बताइए कि ऑर्गेनिक फूड है क्या.
23: तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब ये है कि जैसे खाना जो बिना किसी रासायनिक खाद, कीटनाशक और जेनेटिक बदलाव के उगाया जाता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती करके जो अन्न, सब्जी, फल और अनाज मिलता है उसी ऑर्गेनिक फूड कहते हैं.
22: तो अच्छा, वो आपको ये कहना है कि जो हम लोग खाद, यूरिया और रासायनिक देते हैं, जिसको हम विलायती भी खाद बोलते हैं, तो वो जो है ऑर्गेनिक नहीं होता.
23: हाँ,
22: वो ज़्यादा पैदावार होता होगा. क्योंकि हम लोगों के चाइल्ड मतलब बचपन में गांव में हमारा उठी वही हमारा था, ऑर्गेनिक ही था पूरा. लेकिन उस समय पैदावार जो थी आपका, क्या उसकी पैदावार ज़्यादा कम होती है या ज़्यादा होती है? ऑर्गेनिक का कम होती है, ऑर्गेनिक के कम होते हैं, क्योंकि एक बीघा में 8 मन, मतलब मन होता था उस समय कहते थे हम लोगों का, 40 kg का है क्विंटल अब कहते हैं, तो मुश्किल से हमारे 4 क्विंटल पैदा होता था 5 क्विंटल गेहूँ। जब ये हुआ है तो समझिए कि 15 क्विंटल, तो इतना पैदावार बढ़ी है। तो क्या क्या फायदा है इसके औद्योगिक का किसानों के लिए, या क्या है इसके बारे में?
23: तो सबसे बेस्ट बेनिफिट, सबसे अच्छा लाभ तो यही है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप ये केमिकल्स यूरिया वगैरह जैसे मेरे दादी ने बोला है अगर वो सब डालोगे, वो तो एक तरह से आप एक तो पौधे में पॉइजन डाल रहे हो, फिर अपने खुद के शरीर में भी वही केमिकल और जहर जा रहा है। तो ऑर्गेनिक खाने में कीटनाशक और रसायन नहीं होते हैं, इसलिए कैंसर, शुगर, एलर्जीज और जो भी आपको हार्मोनल डिजीज़ या इश्यूज होते हैं वो समस्या का खतरा नहीं होता। तो इसमें विटामिन भी ज़्यादा होते हैं और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होते हैं
22: ऑर्गेनिक में।
23: हाँ, ऑर्गेनिक में।
22: और जो हमारा बिना ऑर्गेनिक का है, जो हम यूरिया वगैरह और अन्य खादों से हम इकट्ठा करते हैं, फूड्स देते हैं उनसे, अभी यहाँ पर भी ऑर्गेनिक बनिंग वगैरह में मिलता है।
23: हाँ, बनिंग में सीधा मिलता है,
22: सीधा मिलता है, जैसे काऊ मैन्योर है या चिकन है, ये भी तो ऑर्गेनिक ही हुआ। हाँ। किस पर? तो ये क्या जो ऑर्गेनिक हमें बच्चों को ही खिलाना चाहिए या बड़े या सभी के लिए?
23: वैसे तो बच्चों और बुज़ुर्गों के दोनों के लिए सही है और सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों और बड़े लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनके लिए ऑर्गेनिक दूध, फल, सब्जी, ये वो सब ज़्यादा फायदेमंद होता है।
22: तो ऑर्गेनिक दूध का मतलब है कि जो हम गाय वगैरह को जो हम चारा देते हैं, जो खाना देते हैं, वो भी हमें ऑर्गेनिक खिलाएंगे तब वो उनका दूध ऑर्गेनिक होगा।
23: हाँ, जैसे जब वो अच्छी घास खाएंगे,
22: अच्छा फूड खाएंगे। हाँ, अच्छा खाना उनको दिया जाएगा, ऑर्गेनिक खाना दिया जाएगा तो ऑर्गेनिक उनका दूध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी हम आप लोगों से बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फूड के बारे में और कुछ ऑर्गेनिक फूड का लाभ और हानि और के बारे में बता रहे हैं आदित्य जी। तो हम फिर सोचते हैं कि लोगों का ऑर्गेनिक सुन करके लगेगा कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कुछ लोगों को बारे में, तो हम अब एक आप गाना सुना दीजिए ताकि उन लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा और फिर हम लौट कर बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड को क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप क्या
24: अभी एक मुझे एक मिनट दीजिए,
22: तो तब तक
24: एक मिनट अभी आपके सामने मैं भी पेश कर रहा हूँ एक नजराना, ये किशोर कुमार ने गाया हुआ है और ये देवानंद ने फिल्म में ये गाया हुआ है गाना, और अब मैं अभी नरेश कुमार हूँ तो मैं अभी मेरी आवाज़ से मैं ये गाना गा रहा हूँ।

0: का रास्ता देखे, ए दिल ए सौदाई।
1: तो हम फिर करते हैं शुरू, आप तब तक देख
0: हाँ,
1: करें
0: कर देता हूं।
1: और मैं आदित्य जी से करता हूँ उसके बारे में चर्चा। तो पर्यावरण के लिए क्या ऑर्गेनिक फूड का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होती है, क्या नुकसान होता है, क्या उसके लिए भी कुछ है?
2: तो नुकसान और हानि वगैरह के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी वैसे तो पर्यावरण की रक्षा होती है और ऑर्गेनिक खेती से ज़मीन की उर्वरकता बनी रहती है और पानी और मिट्टी प्रदूषित नहीं होती है। और जैसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी लगा लो, तितली, ये वो सब, ये जैसे जीव सुरक्षित रहते हैं ऑर्गेनिक फूड से, क्योंकि वो जैसे अगर मधुमक्खी आएगी और वो फूल पर
1: बैठेंगी
2: तो अगर वो इस फूल पर जहर होगा तो उसको भी ख़तरनाक होगा। तो इसलिए जब हेल्थी होगा आपका प्लांट तो फिर आपकी एनवायरनमेंट भी हेल्थी होगी और इंसेक्ट्स भी हेल्थी रहेंगे।
1: ये मेरा पर्सनल भी है, हम यहाँ पर एडलेड में 2-3 साल पहले हमने जब उगाया तो इतना हमारे निकला बोटल गार्ड एंड पम्पकिन और आल फू मतलब फूड ब्रिंजल कहते हैं बैगन वगैरह, तो इतना निकला। लेकिन अब उसमें जब हमने वो खाद, अब उसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई, ताकत ख़त्म हो गई धरती की, तो उसमें अब पैदावार ही नहीं हो रही है। वो हम लगा रहे हैं और आगे बढ़ी नहीं। अभी मिर्च इतना होता था, अब मिर्च नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी ताकत जमीन की ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक से ऊर्जा भी बनी रहती है और पैदावार कम होगा लेकिन कंटिन्यू होगा। तो ये है, तो आपका मतलब प्रभावित होता है। फसल तो एक बार निकलेगी दोबारा उसकी ख़त्म, फिर वो ताकत उसको चाहिए। तो अभी आप बता रहे हैं, तो क्या इसके स्वाद में भी कुछ अंतर होता है जो ऑर्गेनिक हम खाएंगे और जो जो खाद दूसरा यूरिया और रासायनिक दे करके कर रहे हैं उससे कुछ अंतर होता है स्वाद में?
2: वैसे तो स्वाद और जो उसका गुणवत्ता होता है वो दोनों ही बेहतर रहते हैं, और ऑर्गेनिक सब्जी और फल का स्वाद ज़्यादा प्राकृतिक होता है, ये ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता है, तो ज़्यादा समय के लिए चलेगा।
1: जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा दिन तक चलता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा अंतर होता है दोनों में,
2: थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगेगा ना,
1: नेचुरल,
2: ज़्यादा मज़ा,
1: क्योंकि वो बिग साइज हो जाएगा, बिग होगा और देखने में भी लगता है कि वो ऑटोमेटिक है।
2: मतलब अक्सर ऐसे ही होगा केस, जैसे अगर आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाई किया है वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन खाने में हो सकता है उसमें फ्लेवर नहीं होगा। और लेकिन जो आप अपनी खेती का निकालोगे, जैसे आज सुबह हम खा रहे थे संतरे, तो वो
1: टेस्ट
2: जो हमारे खेत, हाँ जो हमारे खेत का था बैकयार्ड का, उसमें बहुत मीठा सा था, और जो बाहर से लाए थे वो मीठा नहीं था, एकदम पानी जैसा लग रहा था।
1: हाँ, उसके टेस्ट में अंतर था। तो ये आपके कहने के मुताबिक है कि जो हमारा ऑर्गेनिक है उसका टेस्ट, लेकिन उसका पैदावार कम होती है, बस एक नुकसान है, और नुकसान नहीं है देखा जाए तो। आप कम खाएंगे, कम आप हेल्दी रहेंगे।
2: हाँ।
1: और ज़्यादा क्वांटिटी खा के क्या करना, थोड़ा खाया जाए तो ठीक रहेगा। तो आपका
0: मैं अभी करता हूँ,
1: तो हम
0: इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, क्षमा कीजिए, फिर से ट्राई कर।
1: तो आप इसके बारे में बताएंगे कि किसानों को ऑर्गेनिक जो पैदावार करते हैं तो क्या उनको कोई नुकसान है, क्या उनको लाभ है, या वो कैसे खुश हैं क्या ऑर्गेनिक उगाने में?
2: थोड़ा तो नुकसान होता है लेकिन मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मोस्टली उनके लिए फ़ायदा ही रहता है किसानों के लिए। और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान जो होते हैं वो कर्ज और बीमारी से बचते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो सस्ता मिलता है, क्योंकि उनके जैसे घर
1: से
2: है,
1: जो निकल जाता है उससे बन जाता है,
2: और रसायन नहीं खरीदने पड़ते,
1: क्योंकि वो जो जो घर की वेस्टेज था, तो हम लोगों के यहाँ पहले बचपन में यही होता था कि वेस्टेज था और एक बैक साइड में बनाया था, उसमें डालते जाते थे, एक साल में वो खाद बन जाती थी और वही फिर खींच कर अपने खेतों में। और खेतों में क्या करते थे कि गाय, जो पहले रिवाज था जो वहाँ का हम लोग बनारस के हैं तो वहाँ के रिवाज था कि गाय का जब हमारी गाय दूध देना करती तो छोड़ते नहीं थे, हमारे ग्वाले जो होते थे वो सबकी गाय ले जाते थे, उनको ज़्यादा भाई दूध देना बंद कर दे आप ले जाओ, जब वो उनका काम ही था 50 किसी के गाय होती उनकी नहीं होती, वो पूरे गांव के लोग उनको देते, तो 3-4 लोगों का ना कि आपका हम दे या उनको, उनका बिजनेस था यही। वो गाय तब तक रखते थे जब हमारी गाय हो गई थी, बच्चा देने का टाइम होता था, बताते थे भाई अब आपकी गाय तैयार है आप कहाँ पहुँचा दें, कहे हाँ पहुँचा दो तो मेरे यहाँ पहुँचा दे, तो वो जो गाय का जाता था उनका कैटल पूरा झुंड, तो उनको फिर बुलाया जाता था, उनका डबल पैसा कैसे होता था, क्योंकि आप हमारे खेत में 2-4 दिन, जैसे हमारा बड़ा खेत था तो ज़्यादा दिन उसमें आके 2 दिन का वो बात होती थी, 2 दिन रखोगे 4 दिन रखोगे, उनका एक मजदूरी होती थी और उनमें अनाज ही दिया जाता था, पैसे का रिवाज उस समय नहीं था, तो उतने 4 दिन आके मेरे वहाँ पे वो लोग डाल के सोते बैठते थे और उनकी गाय वहीं पे पेशाब करना जो उनका था रहती थी, सोती बैठती थी, तो वो 4 दिन का वो भी ऑर्गेनिक हमारा था, तो ऐसे भेड़ रखा जाता था जहाँ गन्ने की खेती होती थी, तो भेड़िया को बुलाया गया भाई, भेड़िया वाले को कि तुम गडेरिया उनको बोलते थे, भाई तुम हमारे घर में, तो कहे अभी मुझे टाइम नहीं है, जैसे ये बोलते ना सफेदी वाले क्या आते हैं टाइल्स वाले, कभी टाइम नहीं है हम आपको एक महीने बाद करेंगे या दूसरे दिन, अभी हमारा किसी से बात हो चुकी है, फिर उस दिन 3-4 दिन भेड़ रखेंगी उसमें, तो भेड़ के रखेगा वो होता है कि किस जो काउ ग्वाला और हमारे घरों के बीच में बात होती थी, हम 4 दिन रखेंगे 6 दिन रखेंगे मजदूरी लेंगे, तो वो लोग वहाँ पे तो जो घर में वेस्टेज की खाद होती वो डाली जाती, और ये भी काम होता था, इससे क्या होता था कि उस वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक ही मिलता था, हमें इसका रिवाज नहीं था, ये तो 57-59 के बाद हमारा ज़्यादा चला ऑर्गेनिक का, अरे रासायनिक का, क्योंकि बाहर से उसका अभी भी जो हमें टेस्ट क्यों नहीं आता, हमें अपने बचपन का टेस्ट याद आता है, क्योंकि वो जो आलू ही इतना अच्छा हो जाता था खाने में, टेस्ट आता स्वादिष्ट होता था, वो है नहीं, तो आप ठीक कह रहे हैं कि उनका उनको नुकसान ये है कि जहाँ पे 2 क्विंटल होता था अब हमारे को 10 क्विंटल हो रहा है, तो हम बेच के पैसा ले रहे हैं, तो अब पैसे की ममता सबको हो गई, किसान किसी के हेल्थ के बारे में किसी को चिंता नहीं है, कितना हम बेचेंगे कितना ज़्यादा पैसा आएगा, कितना मैं पैसा वाला हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे अपोजिट देखा जाए तो कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा, ऐसा भी है क्या कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है उनको नहीं है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में?
2: हाँ पॉपुलेशन तो है, मतलब डिमांड फिर ज़्यादा है और फिर सप्लाई भी उसके साथ मैच करना होता है, लेकिन
1: तो महंगाई ज़्यादा महंगाई,
2: तो यही एक सबसे बड़ा, अब हम लाभ पर आएंगे, सॉरी हानि पर, तो सबसे बड़ी हानि तो यही है कि महंगा पड़ता है बहुत लोगों को जो ऑर्गेनिक फूड होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में पैदावार कम होती है तो जो मेहनत ज़्यादा लगती है इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा समय लगता है उगने में नेचुरली, और इसलिए इसकी कीमत सामान्य खाने से कम 20-30% ज़्यादा होती है।
1: अच्छा महंगा होता है।
2: हाँ।
1: लेकिन कुछ किसान लोग तो इसको क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि रासायनिक वाले को उसको करके बेच दें ऑर्गेनिक करके,
2: ये
1: क्या पता चलेगा
2: कि अब सबसे अब सबके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते आजकल, तो कभी कभी आप जाओगे वहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइज़ किया होगा कि ये ऑर्गेनिक खाना, लेकिन कुछ जैसे कुछ वेरीफाई करने के लिए है नहीं ना, यू कैंट किसी तरह से आप देख नहीं सकते कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो कभी कभी आपको विश्वास ही करना होता है, या आप खुद ही खेत जाओ देखो कैसे काम करता है, फिर आपको पता चलेगा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है या ना है।
1: तो ऐसा लोग कहते हैं कि शहर में जो है ज़्यादा ऑर्गेनिक है, गाँव में ऑर्गेनिक मिलना हार्ड है, तो क्या ये इससे आप सहमत हैं?
2: मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, हम भी कभी हर साल समर हॉलीडेज में हम जाते हैं गाँव, और उत्तर प्रदेश में,
1: इंडिया में आप गाँव में जाते हैं,
2: बनारस के पास हमारा गाँव है, तो वहाँ पर हर बार जाते हैं, वहाँ पर तो उनके पास बहुत सारी सब्जियाँ, हम वो खेत में हमें जाते हैं दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ये है ये है, तो वो तो सब ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं, और इंस्टेड मुझे लगता है कि मेन जैसे बिग ग्रोसरी स्टोर्स में जैसे वूलवर्थ्स लगा लो, फूडलैंड, आईजीए, कोल्स, ड्रेक्स, ये वो सब, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेज कम मिलेगा, क्योंकि एक तो आई थिंक लोगों को डिमांड नहीं है और अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड कितना आपके लिए लाभदायक हो सकता है. तो जहाँ मैं भी काम करता हूँ फूडलैंड में, तो मुझे वहाँ पर कुछ कस्टमर्स आते हैं कभी कभी पूछने कि आप लोगों के पास ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेज सेक्शन कहाँ पर है. मैंने बोला है ही नहीं हमारे पास. लेकिन हमारे उसी सेम शॉपिंग सेंटर में लगा लो 20 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा दुकान है, नहीं सॉरी छोटा सा दुकान है, बनाना बॉयज़. वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सामान मिलता है, लेकिन वो आपको कम से कम वही जैसे मैंने बोला 20-30% ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पर,
1: लेकिन ऑर्गेनिक होगा.
2: हाँ
1: तो आप नरेश जी आपका ठीक हो गया तो आप गाना सुना दीजिए.
0: कट हो रहा है इंटरनेट कट हो रहा है तो आपके उसमें मोबाइल पे इंटरनेट
2: होगा, वीडियो भेज दो
0: एक मिनट.
1: तब तक हम वो कर देते हैं एक कविता, कविता सुना देती हूँ मैं.
0: YouTube पे लगाओ किसका रास्ता देखे करो की.
2: अच्छा
0: अब ब्लूटूथ ऑन करना और पेयर करना उसको S2PR.
2: ऐसी चलेगा
0: S2PR.
1: सॉरी फॉर दैट, हमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है.
0: आ गया.

0: क्या आपने पैदावार में कमी के बारे में बता रहे थे, तो क्या ज़्यादा पैदावार में कमी होती है?
1: हाँ, तो जो रासायनिक खाद की तुलना में ऑर्गेनिक खेती में फसल कम होती है, तो इसलिए देश की जो बढ़ती आबादी के लिए पूरी तरह ऑर्गेनिक पर निर्भर होना अभी थोड़ा मुश्किल है,
0: क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है।
1: हाँ।
0: जब पैदा कम होगा तो खाने की कमी होगी,
1: और वही क्योंकि आसान है इतना जल्दी बनाना इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह के साथ, तो जब डिमांड इतना होता है
0: जब केमिकल के साथ ऑर्गेनिक बनेगा तो फिर केमिकल ही होगा, वो भी ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक तो होता है कि जितना हमारे घर से वेस्टेज है या हमारा गाय के गोबर है, ये सब है। तो अभी तो ट्रैक्टर वगैरह से सब काम हो रहा है, तो हमारे बैल भी कम हो गए, जानवर भी कम रखे जा रहे हैं, गाँव में भी लोग नहीं रख रहे हैं ना, उसके काम से हट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है ना, ज़्यादा लोग ग्रामीण लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो गांव में रुक कम रहे हैं। जब को कम लोग रहेंगे वहाँ पे पशुपालन कम होगा, तो अपने आप ही ऑर्गेनिक चीज़ें कम होंगी, तो उस पर निर्भर हो रहा है। पॉपुलेशन वाकई बढ़ रही है।
1: हाँ।
0: और लोगों को टेस्ट भी हो गया ना, हमने देखा है कि वूलवर्थ वगैरह में लोग ज़्यादा घुसते हैं, और जब चाइनीज सेंटर मार्केट है तो उनमें जो सामने है दुकानें वो तो ऑर्गेनिक का नहीं है, बैक साइड में थोड़ी सी दुकानें जो है ऑर्गेनिक है, तो उनका उतना चमक नहीं रहा है, इनमें शाइनिंग ज़्यादा है। जो आर्टिफिशियल फ्रूट वगैरह हैं आपको देखेंगे चमकता हुआ नजर आएगा, जो आपको ऑर्गेनिक है वो थोड़ा सा
2: डल दिखेगा,
0: डल दिखेगा। तो डल लोग कम खरीदते हैं, बच्चे लोग उसको पसंद करते हैं चमकती चीजों को, जबकि वो उनको ये नहीं पता कि ये वो है आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे, रासायनिक है।
2: हाइब्रिड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं।
0: हाँ, बड़े होंगे चमकता होगा,
2: बड़ा बड़ा फल देख के खुश होते हैं,
0: खुश होते हैं। हाँ, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो हमें लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में।
1: तो मुझे तो लगता है कि देखो, ऑर्गेनिक फूड महंगा तो पड़ता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए तो बहुत ही निवेश है, और बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन जैसे अभी मैंने बोला था कि हमें एकदम 100% ऑर्गेनिक फूड की तरफ शिफ्ट होना अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में जैसे आप लगा लो 2-3 बार दूध, दाल, हरी सब्जी, ऐसी चीज़ें आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं, तो आप कोशिश करिए। फिर ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम एक दिन क्या पता 100% ऑर्गेनिक हो जाएं।
0: लेकिन ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को तो खास तौर से ऑर्गेनिक दें।
1: हाँ।
0: चाहे बेशक बड़े लोग खाते हैं,
2: मेरे अंदाज़ से ये ऑर्गेनिक जो जो भी पदार्थ है वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सेम होने चाहिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो मुझे लगता है कि तो भी फ़र्क पड़ेगा लोगों में परचेजिंग करने में।
0: लेकिन वो है ना कि उनको अब जैसे कि जो उगाता है, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी हम लोग खेती वाले हैं, उनकी मेहनत और उसको देखा जाए तो हमें जितना जो ये हमारा संसाधन है, आराम का संसाधन है, वो महंगा है और खाने की चीज़ें महंगी सस्ती हैं, विकास की वो हमारे लिए ज़रूरी है।
2: हाँ, वो सही बात
0: और है उनकी। इसीलिए जो गांव में लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, गांव से बाहर आ रहे हैं अपने खेतों को, बल्कि ये बिल्डर लोग लेकर के बिल्डिंग बना रहे हैं ज़मीनों को, रीज़न यही है कि मन आप उनकी परिश्रम के हिसाब से, बल्कि उनको नहीं मिल रहा है चीज़ें। हमें लगता है चावल वगैरह देखे तो देखा जाए तो बहुत सस्ता है ना,
2: चावल से,
0: क्योंकि मैं एक किसान की लड़की हूँ तो मुझे मालूम है कि उनकी को रात को पूरी रात रात भर पानी में काम करते हैं, उनको क्या मिलता है, और उनकी उनका रिस्पेक्ट भी नहीं, खुद घर वाले भी नहीं रिस्पेक्ट, जो शहर में आ जाते हैं वो गांव वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते।
2: मैं सोच रहा था थोड़ा मैं भी अपनी राय आपको न्यूज़ बताऊं। मैं सोचता रहा कि अगर प्राइस में थोड़ा सा कटौती हो जाए तो टर्नओवर में इंसान कमा सकता है,
0: लेकिन उसका कटौती करके उनको नुकसान पे है। तो अभी बहुत चर्चा हो गई इसके बारे में, ऑर्गेनिक का और आपके गाने के, और आपके भी जो आपके व्यूज़ हैं वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। तो हम अभी हमारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोग यहाँ पर आदित्य और नरेश जी आए आप हमारे साथ हिंदू संगम चैनल पे, और मैं हूँ दयावती पांडे,

0: 5EBI 103 से मल्टीकल्चरल रेडियो. थैंक यू फॉर मल्टीकल्चरल, अगेन थैंक यू फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी मल्टीकल्चरल ऐसे. तो आप इस, अब हम लोग इसका अंत हो रहा है. नमस्कार, हरिओम,
1: थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद.
0: और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज ऑर्गेनिक का, तो ठीक है, बताइएगा कि क्या.
1: नमस्कार.